बेटे तेरा बाबू एक बढ़िया मानस था, सारा काम एकला देखा करता, अब उसके जाए पाछे सारी जिम्मेदारी तेरे पर आ गई, पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान रखा और खेती बाड़ी पर ध्यान दिया।

0: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।
1: ओके।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, हमारे प्रतिदिन प्रसारण होने वाले खास आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश, जिसे आप सुनते हैं आपकी आवाज के साथ आपका मन पसंद गाना। दोस्तों, हमें कॉल करने का समय आप अवश्य ध्यान में रखें। सुबह की प्रथम पारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें कॉल करने का समय आप अवश्य ध्यान रखें। सुबह की प्रथम पारी की हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9:30 से 10:30 तक। और संध्या के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 3:00 से लेकर और 4:00 तक। आपकी फरमाइश से आप हमारे स्टूडियो में दर्ज करा सकते हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर आप अवश्य लिख लें 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। नंबर एक बार पुनः सुने और अवश्य लिखें 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। आप हमें इस नंबर पर, आपके पास व्हाट्सएप खोलिए और व्हाट्सएप के अंदर आपकी आवाज रिकॉर्ड करके आप अपनी आवाज में नाम, जगह और गाने का बोल बोल कर भी हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में आपकी आवाज को जरूर शामिल करेंगे। धन्यवाद। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मिला। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों वक्त हो चला है आपका मनपसंद और फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: नमस्कार सर
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: मेरा जय किशन है।
1: जय किशन जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: मेरा नाम है परदेसी, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी वॉइस है।

0: जी नाम बताइए सर।
1: सर नाम बाबू खान है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी लखेरे की कोठी के पास।
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार आई।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर।
0: जी मेरा नाम सोहेल सेफी।
1: सोहेल सेफी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: जी राजीव कॉलोनी गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: आप? जी सर आप यहाँ चांदनी टाइटल सॉन्ग
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

Thank you.

चुका है 10:15 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475। उन्हें प्रयास करें 6378024475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हाँ सर नमस्कार
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: शहजाद खान पुराने में जाऊंगा।
1: शहजाद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: पांच वक्त मीनारों से आती है आवाज।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: जी नाम बताएं सर।
1: रफीक बोल रहा सर।
0: रफीक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: लोगो मस्जिद के पीछे 12 नंबर 8।
0: रफीक जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जीना सिर्फ मेरे लिए।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर। हेलो।

0: राधे राधे, श्री राधे राधे सर।
1: राधे राधे, नाम बताएं आपका।
0: मेरा नाम है सर महेंद्र कुमार।
1: महेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी जी आर गारमेंट।
1: अच्छा, बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर गाना सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है नागिन और बोल है तेरे इश्क का मुझ पे हुआ। सर
1: बिल्कुल सुना रहे सर आपका, आपकी सुना इसका गाना। हेलो

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM
0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
0: गंगा
2: हेलो
3: जी नाम बताएं
2: गुलशन
3: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं
2: गंगापुर सिटी
3: बताएं गुलशन जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
2: जो मैं जो पठान
3: बिल्कुल सुना रहे हैं

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
5: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
6: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
7: हेलो,
8: नमस्कार जी।
7: जी नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
8: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
7: तुलसीराम जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
8: का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है।
7: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश सही करना।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गीत सुनना है, पिक्चर का नाम पिया का घर और गीत के बोल है ये जीवन है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सेंट।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: वंदना।
1: कहाँ से बात कर रहे
2: हो?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम? कौन सा?
2: वो लड़की नई जिंदगी है मेरी।
1: वो तो हम सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अंकित मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगा सिटी मऊकला।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: नौडी वाले का ब्लॉक सॉन्ग।
0: ब्लॉक सॉन्ग?
1: हाँ ब्लॉक।
0: ओके, तो तुम्हारे यहाँ की फरमाइश करिएगा ना।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हेलो टेलर सलेम फोर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गंगा जमुना सरस्वती का कोई सा भी गाना।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम लवकुशमीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नसिया कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: छम छम करती गली में जब नकली।
0: ओके, मैं सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करेगा ना।

0: जी नाम क्या है सर आपका?
1: मेरा नाम शशिभूषण कुमार है, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: या फुलर घाटे का मैंने प्यार तुम ही से किया है, वही गाना भी।
0: वही तो सर सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करेगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी मैम। थैंक यू मैम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: योगेश जांगड़े पे मित्रा छत्तीसगढ़।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म है खुदगर्ज और गीत के बोल हैं आपके आ जाने से।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: धन्यवाद।
1: यू वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कैसे हो आप?
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: एक तू ही अपनी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिए गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:15 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मैडम जेकी है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
2: मैं गंगापुर सिटी जीआर गारमेंट।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: वो राज, मूवी का नाम है राज, कितना प्यारा कितना हसीन चेहरा है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: कहाँ चलवाना है?
1: नाम क्या है आपका? क्या? हेलो
0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
0: दुनिया पर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तेरी गली।
1: तेरी गली में।
2: तगड़ी बात।
3: हेलो।
4: की रह गया सी, एही बस जो तमाशा करन आ गया, चला जाए।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
3: हाँ जी सर, नमस्ते, नाम क्या है आपका?
4: जी नमस्ते मैम, मेरा नाम अक्षत है, मैं गंगापुर से बात कर रहा हूँ।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: जी मैम, गाना है तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना सके।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना। रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: जी थैंक यू मैम।
3: यू वेलकम सर।
5: वो आंखें जो सिर्फ मुझे देखती थी, वो होंठ जो सिर्फ मुझे पुकारते थे, उन पर किसी और का हक बर्दाश्त नहीं होता।
6: वक्त ही कहां था तुम्हारे पास, उन होठों पर ठहर सको, उन आंखों में उतर सको। अब मैं किसी और की हो चुकी हूं।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नवीन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सिग्नल।
0: ओके, तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: नमस्ते।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गौरव मीना मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: 295 सिद्धू मूसे वाला।
0: ओके, तो सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो, से बात कर रहे हो?
1: माधोपुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: 8% चला दो मैम।
0: कौन सा?
1: 8%
0: 8%।
1: हाँ
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: हीर का।
1: कौन सा मैम?
0: हीर।
1: हीर?
0: हाँ।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: चला।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: बिल्कुल सैनी।
0: कौन से बात कर रहे हो?
1: नमस्कार सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: संभल के डाकू
0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम घनश्याम दास मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं सुनना चाहूँगा साहिबा सॉन्ग।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: उला देवी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मिर्जापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: गाना तो वो सुना चांद के पार चलो, पर आप

0: हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मैम मेरा नाम है ये सलमानी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: चूड़ीगढ़ गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं कोहिनूर पिक्चर का है, जब तुम आ जाते हो सामने।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम संजना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं रंग शरबतों का।
0: ओके मैम, सुना रहे
2: पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए, दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: क्या नाम?
0: कहाँ से बात कर रही
1: हूँ? गंगापुर।
0: कौन से गाना सुनना चाहोगे?
1: गंगा के किनारे।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: दुर्वेश भूजन।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: हम मिर्जापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: एक खटोला जेड़ के भीतर एक खटोला जेड़ के बाहर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।

0: हेलो मैम।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आशीष नागरवाल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो मैम?
0: गंगापुर मानपुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: होपलेस वाला।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: मन राज क्या
1: बात साफ सी गली नवारा दूसरा है सीन रे तू पढ़े मैगजीन मारी चल मैगजीन लोग दूर दूर अटे
2: हेलो
3: हेलो
2: नाम क्या है आपका
3: नहीं
2: कहाँ से बात कर रहे हो
3: गंगा पूछी थी
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे
3: काले रंग की गाड़ी है
2: वो

0: हेलो,
1: आपकी नाम क्या है आपको?
0: मेरा नाम है महेंद्र कुमार, रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाना के बोल है लाल लाल होटल, किसका नाम है?
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: तानिया गुर्जर।
2: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुर सिटी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये बिस्तर बैठा बैठा भी वो वीडियो कॉल पर बात करे, छोटा कौन है नाम ना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी।
5: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।

0: हर 6 महीने बाद बूटे बदलने वाला जब करना पऊ अपा
1: वो तो करना पऊगा जी। कुछ होंगे सदा बहार, जेडे खड़ गए तो खड़ गए, कुछ मौसम तरह बदल जाते हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026 हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा हम क्या देते हैं AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स
1: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी।
4: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है 1 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीचों में कुछ खट्टी मीठी वार्तालाप करें।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:06 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में मेहमान के रूप में आई है सुनीता शर्मा जी, से करते हैं इनसे कुछ भेंट वार्तालाप और सुनते हैं इनकी वार्तालाप।

नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम सुनीता शर्मा है। आप सुन रहे हैं अपना प्रिय सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम 89.6। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, संतुलित आहार और बालिका स्वास्थ्य। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर नहीं करता है और बच्चों में भी बालिकाएं समाज की महत्वपूर्ण आधारशिला है। एक स्वस्थ बालिका ही आगे चलकर स्वस्थ महिला, स्वस्थ माँ और स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। इसलिए बालिकाओं का स्वस्थ और पोषण केवल परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास का भविष्य है। आज हम जानेंगे संतुलित आहार क्या है, बालिकाओं के लिए इसका महत्व क्या है, कुपोषण के दुष्परिणाम क्या हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बालिका स्वास्थ्य महत्व, स्वस्थ बीमारियों का क्षण केवल परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास का भविष्य है। आज हम जानेंगे संतुलित आहार क्या है, बालिकाओं के लिए इसका महत्व क्या है, कुपोषण के दुष्परिणाम क्या हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बालिका स्वास्थ्य महत्व, स्वस्थ बीमारियों का ना होना, स्वस्थ केवल बीमारियों का ना होना नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना भी है। जब कोई बालिका स्वस्थ होती है तो उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बेहतर होती है, शरीर विकास सही होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है। इसके विपरीत यदि पोषण सही नहीं मिले तो बालिका का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषण तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो। इन पोषण तत्वों में शामिल हैं कार्बोहाइड्रेट, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, आलू। प्रोटीन, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक। दालें, दूध, पनीर, सोयाबीन, अंडा, चना। वसा, ऊर्जा का महत्व स्रोत है। घी, मक्खन, मूंगफली, तेल, बादाम। विटामिन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, खनिज लवण, हड्डियों और रक्त निर्माण के लिए आवश्यक। दूध, दही, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फल। पानी, शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यक। प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीना चाहिए। बालिकाओं के लिए संतुलित आहार क्यों होना है? बाल्यावस्था और किशोर अवस्था तेजी से विकास का समय होता है। इस दौरान लंबाई बढ़ती है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, मांसपेशियों का विकास होता है, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक है। यदि इस समय संतुलित आहार ना मिले तो विकास रुक सकता है। कुपोषण क्या है? शरीर को आवश्यक पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तो उसे कुपोषण कहा जाता है। भारत में अभी भी अनेक बालिकाएं कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण के लक्षण, कमजोरी, थकान, वजन कम होना, बार बार बीमार पड़ना, पढ़ाई में ध्यान न लगाना, लंबाई का कम बढ़ना, एनीमिया और बालिकाएं। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी। यह समस्या विशेष रूप से किशोरियों में अधिक पाई जाती है। कारण, आयरन युक्त भोजन की कमी, पोषण की अनदेखी, संतुलित खानपान, आयरन के स्रोत पालक, मेथी, सरसों का साग, चुकंदर, गुड़, चना, किशमिश, अनार। एनीमिया से बचने के लिए आयरन युक्त भोजन नियमित लेने चाहिए। किशोर अवस्था में पोषण का महत्व, 10 से 19 वर्ष की आयु किशोर अवस्था कहलाती है। इस समय बालिकाओं के शरीर में कई

परिवर्तन होते हैं। उन्हें चाहिए पर्याप्त प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, स्वच्छ पानी। किशोरियों के लिए दूध, दाल, हरी सब्जियां, फल अत्यंत आवश्यक हैं। कैल्शियम का महत्व। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम के स्रोत दूध, दही, पनीर, रागी, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां। यदि किशोरावस्था में पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलेगा तो भविष्य में हड्डियों की समस्या हो सकती है। फल और सब्जियों का महत्व। फल और सब्जियां शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करती हैं। प्रतिदिन विभिन्न रंगों के फल और सब्जियों का सब्जियां खानी चाहिए, जैसे गाजर, टमाटर, पालक, पपीता, केला, अमरूद, संतरा। जंक फूड से होने वाले नुकसान।

इलाकों में जंक फूड खाने का चलन बढ़ गया है, जैसे पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले स्केप। इनमें पोषण कम और वसा, नमक तथा चीनी अधिक होती है। इसके कारण मोटापा, कमजोरी, पाचन समस्या, भोजन की कमी हो सकती है। स्वच्छता और स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य केवल भोजन से नहीं बल्कि स्वच्छता से भी जुड़ा है। ध्यान रखें, भोजन से पहले हाथ धोएं, स्वच्छ पानी पिएं, साफ बर्तन उपयोग करें, फल और सब्जियां धोकर खाएं, आसपास सफाई रखें। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। बालिकाओं का मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्हें चाहिए परिवार का सहयोग, सकारात्मक वातावरण, खेलकूद, पर्याप्त नींद, तनाव मुक्त जीवन। स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का आधार है। खेल और व्यायाम का महत्व। संतुलन आहार के साथ नियमित व्यायाम भी आवश्यक है। बालिकाओं को प्रतिदिन कम से कम 30 से 60 मिनट तक शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, जैसे दौड़ना, योग, साइकिल चलाना, खेल कूद। इससे शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। परिवर्तन की भूमिका। परिवार बालिकाओं के स्वस्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता पिता को चाहिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएं। बेटियों के

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर टीकाकरण करवाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं, बेटी बेटा में भेदभाव ना करें। विद्यालय की भूमिका, विद्यालय भी बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पोषण शिक्षा, खेलकूद, स्वच्छता जागरूकता, स्वास्थ्य परीक्षण जैसी गतिविधियां बच्चों के विकास में सहायक होती हैं। सरकारी प्रयास, भारत सरकार और राज्य सरकारें बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए अनेक योजना चला रही हैं, जैसे पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत अभियान, सम्मान और सुरक्षित अधिकार हैं, उन्हें उचित मजदूरी, सुरक्षित वातावरण, सम्मानजनक व्यवहार, निर्धारित कार्य समय मिलना चाहिए। महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे श्रमिक पंजीकरण, बीमा योजना, पेंशन योजना, स्वास्थ्य योजना, मातृत्व सहायता। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक है। असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के अधिकार, भारत की बड़ी संख्या में महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं, जैसे खेतीहर, मजदूर, घरेलू कामगार, छोटे उद्योगों में काम करने वाली महिलाएं, इनके लिए भी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई है। महिलाओं को इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। महिलाएं श्रमिकों के समान चुनौतियां, आज भी महिलाएं अनेक महत्वपूर्ण विभिन्न समस्याओं का सामना करती हैं। कम मजदूरी, लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर असुरक्षा, स्वास्थ्य समस्याएं, अधिकारों की जानकारी का अभाव, इन चुनौतियों को दूर करने के लिए जागरूकता आवश्यक है। शिकायत कहां करें? यदि किसी महिला के साथ अन्याय का या शोषण होता है तो वह श्रम विभाग, महिला आयोग, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सहायता 112 पर शिकायत कर सकती है। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से डरना नहीं चाहिए। जागरूकता का महत्व, अधिकार तभी प्रभावी होते हैं जब उनकी जानकारी हो। महिला को चाहिए कि वे अपने कानून अधिकार जाने, सरकारी योजना की जानकारी लें, श्रमिक पंजीकरण करवाएं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ें।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:59 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। 89 सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: तो वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों तो वक्त हो चुका है 3:54 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:59 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले सुने थे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके

0: आफ्टरनून मैम.
1: गुड आफ्टरनून मैम, नाम क्या है आपका?
0: सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रहे हैं. तू रग रग में इस तरह समाने लगा.
1: ओके मैम, सुनाओ, फरमाइश करिएगा ना.

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम शबनम मैम। मुझे मेरे बेटे के लिए गाना सुनना है। मेरा बेटा मैम फौज में है। संडे से आती है कि घर कब आओगे। मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है दीदी, ये गाना सुनवा दी।
1: ओके मैम, जरूर सुना रहे हैं। आपकी फरमाइश करेगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने की बात।
0: मेरे बेटे का नाम दिलशान खान है मैम।
1: हाँ जी मैम, रिकॉर्डिंग में अपना
0: ठीक।

0: आदरणीय दीदी सादर नमस्कार।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से।
1: और सर कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन गर्मी थोड़ी बढ़ गई है।
1: हाँ सर, गर्मी तो तेज हो गई है अब।
0: जी
1: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: फिल्म का नाम है कारपोरेट।
1: हाँ जी।
0: ओ सिकंदर झक ले अपने दिल के अंदर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, सादर नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।

0: मोनिका
1: मोनिका
0: कहाँ से बात कर रहे हो मोनिका जी?
1: रेलवे कॉलोनी। कौन सा गाना सुनना चाहोगे? जान में जान सिया जाए यार तू आ जा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हाँ जी सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: नमस्कार नमस्कार
0: जी,
1: नाम तो बाबू खान है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर सिटी लखेरे की कोठी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: किया है प्यार तो पड़ेगा निभाना, दोनों की आवाज में चाहिए, दोनों की।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पड़ेगा
1: हाँ दोनों की आवाज में।
0: ओके

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: दीवाने में दीवाने।
0: ओके सर, ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो मैं जी, नमस्कार जी
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है असली नकली और गाने की बोल है एक तो ये भरपूर जवानी, दूजी और बरसता पानी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ही गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माय सिस्टर।
0: वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैडम राजू जाट।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: यूपी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: यूपी से परदान याद इंदौरी गोली।

0: 96 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मुकेश।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: यूपी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बस एक तू ही अपनी सी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सीताराम गुर्जर।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: बामनबाग से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गुर्जर आड़े।
1: कौन सा?
0: तुलेले राम राम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 5:10 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम अभिषेक
2: है। कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं लकीरा कॉलोनी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: पागल साउंड।
2: कौन सा?
1: पागल।
2: पागल।
1: हाँ
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
3: आज 14 साल बाद मुड़िया हाँ उन आरामा ते देख के उही हवामा क्यों अज वधिया सावा ने। काश जे मिल जे तू ता जिंदगी सफल हो जावे, तू गीत मेरे दा कल्ला कल्ला लफ्ज हो जावे।

0: तो तेरा परिवार शायद छड़ के चल गया। तो कुछ साल बाद में तेनू एक हाथ ने किया ते उसने रोज पढ़ती गई पढ़ता सी तो एक दिन हर रोज हर सवेर तू मेरी वेट कर ते मैंने वेख वेख तेरी छोटी जी स्माइल सब कुछ पता लग जाए। तो पता भी नहीं सी कि इन्नी छोटी जी उम्र च इतना प्यार हो सकता। मैंने पता सी तो आएगा ते मैं तेनू दस सकां कि मैं तेरा 89.6
1: पे रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी।

हाँ हाँ हाँ, थोड़े थोड़े लेफ्ट आगे पीछे, अरे अरे अरे अरे, अरे ट्यून इन कर रहे आपने 89.6 रेडियो डीएस। और इस वक्त अगर कार चलाते हुए आपने आगे वाले या बाजू वाले, दाएं वाले, पीछे वाले, किसी भी कार वाले इंसान को आपने गंदे गंदे हाथों से इशारे अगर किए हो, तो शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में और जिम्बाब्वे में नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे में रूल्स है, अगर आप गाड़ी चलाते हुए किसी भी आसपास वाले गाड़ी के ड्राइवर या सड़क पे भी खड़े इंसान को गंदे इशारे करोगे हाथों से, तो आपको जेल हो सकता है। शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और इस वक्त ट्यून इन कर रखा आपने रेडियो डीएस 89.6, क्योंकि कुछ अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए।

0: संस्कृति की धड़कन
1: ट्यून इन कर रखा है अपने 89.6 रेडियो डीएस और कहीं जू में नहीं हो आप। लेकिन लेकिन लेकिन आज का शो यही तक था, लेकिन जाने से पहले एक बढ़िया फैक्ट मेरे हाथ लगा है। क्रो यानी कि जो कौवे होते हैं वो इंसानों के चेहरे याद रखते हैं, और एक और खास बात यह है कि अगर उनके मन में कोई ग्रज है यानी हमारे खिलाफ शिकायत है कुछ भी, तो वो सारी चीजें भी याद रखते हैं। यानी कल ऑफिस जाओगे और बॉस को पुराने ग्रजेस याद रहे तो वो आपका बॉस नहीं, वो है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6।

0: खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ये तो आपने सुना ही होगा। मैं हूँ आरजे खुशी, लेकिन इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आजकल लोग अपनी जो बड़ी खुशियां हैं उनको मनाने से भी कतराते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत में हर दिन बहुत खास होता है, हर दिन कोई ना कोई खास तिथि होती है, और अगर हम क्लोजली देखें तो कहीं ना कहीं हर दिन एक त्योहार होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए माना हर दिन तो हम लोग नहीं मना सकते, लेकिन महीने में एक या दो दिन तो ऐसे जरूर आते हैं जब हम सब लोग मिलकर साथ बैठकर किसी एक त्योहार को मना सकते हैं। इन छोटी छोटी खुशियों को अगर हम मनाना शुरू करेंगे ना, तो हम देखेंगे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी ऐड होगी। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि हमारी लाइफ में बहाना होना चाहिए लोगों को खिलाने का, उन्हें अपने घर बुलाने का और बहुत सारे मजे करने का। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बात है ना, हम लोगों ने कोरोना काल में सीखी है। मैं हूँ आरजे खुशी। कोई लोग बोलने लगे कि हल्दी का दूध पियो, तो कुछ लोगों ने कहा कि लगातार दवाई लेते रहो, कुछ लोगों ने कहा लगातार आप च्यवनप्राश खाते रहो, तो कुछ लोग बोले कि आंवला रोज खाते रहो। लेकिन आप जानते हो कि एकदम से कुछ खा लेने से आपकी बॉडी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डेली कुछ अच्छा खाते रहोगे ना, तब बात है। अलग से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि इतनी जो कलरफुल सब्जियां आपको दिखती है ना, इतने रंग बिरंगे फ्रूट्स आपको दिखते हैं, उनको खरीद कर खाना शुरू कर दीजिए। जितने रंग की सब्जियां आप खरीदेंगे, उतना प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे। और अगर आप रेगुलर वे में ये करेंगे तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि आपको बाहर से किसी चीज को कंज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर एक बार इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो किसी भी सीजन में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हमारा दिमाग ना कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देता है अगर हम जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैं हूँ आरजे खुशी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत वीडियो देखने की आदत उसको पड़ जाती है और लगातार गलत वीडियो देखता रहता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड की वीडियो देखने शुरू करते हैं और एक के बाद एक वही वीडियो देखते रहेंगे, वही वीडियो उनके टाइमलाइन में आ जाएंगे। तो जो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपने फोन में देख रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे दिमाग पे। एक तो अगर हमने एक ही तरह का कंटेंट देखना शुरू कर दिया तो वो ही हमारी प्रोफाइल पे बार बार आएगा। इसलिए अगर कोई फालतू का कंटेंट आपकी प्रोफाइल में आए ना, उसे देखिए ही मत, उसे स्किप कर दीजिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी हमें उस यंत्र से मिल पाए जिसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन। सबसे ज्यादा हम लोग इसी के साथ वक्त बिताते हैं ना, तो क्यों ना इसे ही पॉजिटिविटी में बदल दिया जाए। सोच कर देखिए। मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: सिंगापुर सिटी की धरतर रेडियस
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSI अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
3: जो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त आकाश, और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।